0: नमस्कार है वडा अध्यक्ष ज्यू।
1: नमस्ते नमस्ते। के बजाउनु भयो त
2: रेडियो संखुवा सभा समय सूचक अहिले बिहानको 9 बज्यो।

का तिमलाई के भाग मलाई मात्र थाहा छ जवानी कुराले होला रातै परिछ हो तिम्रा डोला डोला।